ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैताने सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM नेटवर्क सिंध।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट
7: कैल पधराए मौजवान मुस्तक मानुन के हर हफ्ते 500 रुपए जो टोकन दिनो विंदो यो टोकन का मकदार में पेट्रोल खरीदण या इस्तेमाल करे सकबो फैसले सा घट मकदार में पेट्रोल खरीद कंदण शहरी ब उन स्कीम मा फायदो हासिल करे सकदा 800 सीसी ताई वारन गाड़ियों लाए मौजूद तरीकार में का तब्दीली न कई वही हर 10 दिन का 10 लीटर जो एक टोकन जारी थी

0: आप लोग झूठ प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आपके सभी कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना, ये भी किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकती आपसे। इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जोर नहीं देता कि एक तरफ आप चौदह के जनाजे उठाएं और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें। कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो, उसका यह फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे, इसमें फर्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना, ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है, तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। मुल्क का नुकसान है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, सबके सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा वो बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो मालूम में लोग फैलाते रहे।
1: घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो आहे त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ मुल्क जे गादी वारे शहर ते का नथी करे सघजे। केर बि ग़लति फहमी में न रहे, इस्लामाबाद खे बंदि करण या एजाज जे आड़ में हमले जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो त अदालती फैसले जी बंदिकड़ी थी त तोइन अदालत जी दरख़्वास्त दाखिल कई वेंदी। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे त मख़सूस कबीलनि जा माण्हू अची रहिया आहिनि, तव्हांखे एहतियात करणो आहे त पंहिंजे इलाइक़े ऐं शहर में करियो। माण्हू या चंदो जमो करण बदिरां दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग ते ध्यानु हुजणु घुर्जे। कुवाट में दहशतगर्दी जो अफ़सोसनाक वाकियो थियो, तव्हांखे नथो सुञाणे त हिकु तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खणो ऐं ॿिए तरफ़ धरणे जी तयारी करियो। हुकूमत जो हिकु भेरो ॿीहर जमायत इस्लामी सां राब्तो मामूली ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर। वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल जमायत इस्लामी जे नायब अमीर लियाकत बलोच सां टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल। लियाकत बलोच चयो आहे त हाफिज़ नईम रहमान ऐं सीनियर क़यादत सां मुशावरत खां पोइ जवाब ॾिनो वेंदो। पेट्रोलियम लेवी जे ख़ात्मे ताईं जमायत इस्लामी जो इजाज़त जारी रहंदो। मौजूदा हुकूमत खे सूबा ट्रोण या इंतज़ामी यूनिट्स में विराइण जो को बि अख़्तियार न

0: 20 सेप्टेंबर से लॉन्ग मार्च का एक अंदा आना पर सजे मुल्क में एक ही वक्त शुरू थी दो। सिंध पंजाब बलोचिस्तान केपी में आवाम जो समुंड इस्लामाबाद पहुंचो। आवाम के खैरात न पर बुनियादी हक घुर्जे लॉन्ग मार्च रोकने जो वायद रस्तो पेट्रोलियम लेवी जो खात्मो आए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान जो मर्दान में जलसे के खिताब। हाफिज नईम रहमान चयो तो कंटेनर रखने से कुछ न थो चालमी कीमतू रुगो पाकिस्तान लाए वधन पियूं जो आवाम से पेट्रोल बम किरायो पो वे। जंग बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमत 35 रुपये का मथे न वधी। इतने मिजाइल का परिया ही महंगाई जहा मिजाइल फायर किया हुआ। वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखने इस्लामाबाद में रेड जोन सील करने जो फैसलो कर वरतो। रेड जोन डां वेंदड़ सभी पंज रस्ता मुकमल तौर बंद क्या वेंदा। जरन मूजिब रस्तन से कंटेनर जो कतारू लगाए वे नफरी मुकररी कई वेंदी। एक्सीडेंट रेड जोन के सील करे रुगो आगामी हालतुन में खोलो वेंदो। सिंध असेंबली मक्का मुकरमा से ड्रोन हमले खिलाफ मजमती ठहराव इकरार मंजूर कर वरतो। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो तरमीमी बिल भी मंजूर। पीटीआई के हामी मेंबर सजाद अली पारा बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ ठहराव पेश। साबिर कायम खान ध्यान छिको नोटिस से गालंदे हैदराबाद इलाके लतीफाबाद में पीण के पानी जो शदीद बुरान है। सिंधु दरिया के कप से होने बावजूद रवासी भी गदलो पानी वापरण से मजबूर आन।
1: मुसलत है फार्म 47 वाली हम इसको नहीं मानते। ये हमने आज एक मुनफरद एहतजाज किया है कि हम असेंबली में इसी तरीके से आएंगे। पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग गई है, ये हमें अंदर नहीं छोड़े। हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है। ना मंजूर, ना मंजूर।
0: तेलगन में वाद है सिंध में करप्शन खिलाफ पीटीआई जाए असेंबली मेंबर तौर गडा गार्डन से चढ़ी पोता। करप्शन कंदड़ खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह पीटीआई वारा पंजन इलाकन में लैंड क्रॉस बन लग्जरी गाड़ियों से चढ़ी आया। सिंध असेंबली वे रुगो फोटो सेशन लाए गडन गार्डन से चढ़िया। सियासत करण घुर्जे पर ही पॉइंट स्कोरिंग जो तरीको है। पीटीआई वारा गार्डन बदरा खाली गडन से भी चढ़ी पे सकिया।
2: तारीखी मादरे वतन है ये फलसफा खड़ी अचन अस उन कबूल करना तैयार ना सिंध कें भी सूरत में न सूबा पा सिंध में न सिंध तकसीम थी सिंध क्यामत ताई सिंध की हैसियत में शाद आबाद रह। इन अवाम के कौम के अपील कर छी हली गली घटी घटी में सिंध मुझी अमां सिंधी चाकिंग घर घर पैगाम पहुंचाया। 20 तारीख का असि अवामी राबता की मुहिम शुरू थे पी 15 नवंबर से कराची में लख इंसान से गुद किया असि वे का वही कुर्बानी में गुजरने ला तैयार आये सिंध जो हर कम यह इंटरव्यू रैली को सरकारी रैली है पर वफा की वजीर इन शहबाज शरीफ जो चोन कि लगाम दे इन कदम कर वजारतू छे दियन वो रैली कदम से खबर पैजी वी अब मुखालिफन सोचे सकन था पर फैसले जो इख्तियार सिंधी अवाम के हथ में अस हथ में।
0: एस टी पी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी सिंध दुश्मन कौतन कुछ वफाकी वजीर से गजी असाज तारीखी मादर वतन से हमलो शुरू किया। कराची में सिंध के वदत खिलाफ वेमक्यूएम जे न पर सरकारी रैली कढ़ने की तैयारी कई पई वे उन में ब वफाकी वजीर शामिल आन। वजीर आजम के सिंध के वदत खिलाफ साजिश कदड़ वजीर के काबीनामा निकाली दे। सिंध के वदत खिलाफ साजिश कदड़ बई वजीर वजारतू छजन रैली कढ़न तो खेन खबर पहुंची वी। कोटड़ी में गलाये कादिर मक्सी सिंध में न सूबा ठंदा न ही विरहंगो थो। कराची में 15 नवंबर से लखन सिंधी गद थी सिंध की वदत खिलाफ सिंधर साजिशों के रद्द कंदा।
3: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

ஒரு பல்லவே சாலத்து அல்ல.

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular Mitti.
7: इमारतूं आहिनि जिन खे प्रिजर्व कयो वञे जिन जी हिफ़ाज़त कई वञे ऐं जिन खे ओरिजिनल उन ई सूरत में यानी हिकिड़ो आम कारीगरनि खां न पर जॾहिं हेरिटेज तौर उहे जेके आहिनि हिकिड़ा पंहिंजो असांजे ज़ाहिरा डिस्ट्रिक्ट जेके जा ऑफिसर आहिनि उन जी तरफ़ां जेकॾहिं कोशिशूं वरितियूं वेंदियूं ऐं हुन खे सकाफ़ती विरसो जेकॾहिं करे डिक्लेयर कयो थो वञे त पोइ ज़ाहिर आहे हिन ते प्रॉपर तरीक़े सां इन्हनि इमारतुनि ते कमु थींदो ऐं थियण बि
8: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
9: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबन के उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम अल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
5: सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान के इलाके में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार गया सिक्योरिटी जरिए मौजूद पंजोड़ और चागी में कार्रवाई दौरान 11 दहशतगर्द मार गया चागी में कार्रवाई दौरान 6 पंजोड़ में 5 दहशतगर्द मार गया दहशतगर्द के कब्जे में वे अंग में हथियार
6: असीं नथा चाहियूं त पीटीआई खे इस्लामाबाद अचण ते कन पकड़े समझायूं मुमकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त 27 सेप्टेम्बर ते ख़बर पइजी वेंदी त रियासत पंहिंजे रिट कीअं क़ाइम करे थी केपीके हुकूमत पहिरियां एफएनसी तहत मिलंदड़ 700 अरब रूपियनि जो जवाब ॾे
5: हुसैन जो हमलनि जो खतरो सऊदी अरब अलर्ट जारी करे छॾियो सऊदी सिविल डिफेंस हुसैन जे इम्कानी हमलनि खे ॾिसंदे सऊदीअ जे राजधानी रियाज़ अल ख़ारिज में अलर्ट जारी करे छॾियो
6: ट्रंप सीएनएन समेत टिनि वॾनि इदारनि जे नुमाइंदनि जे व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी अमेरिकी सदर चयो आहे त इदारा मुंहिंजे इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ कूड़ियूं ख़बरूं पिया पखेड़नि वधीक मीडिया इदारनि ते बि पाबंदी लॻी सघे थी
5: खेरपुर में सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ़ वकीलनि पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकाट एहतजाज बि कयो वियो डिस्ट्रिक्ट बार खेरपुर जे वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी
6: मेहड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ पियादल मार्च करे एहतजाजी मुज़ाहिरो अॻवाणनि चयो आहे त बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जी खोट आहे न घिटियूं ठहियूं आहिनि न ई पीअण जो पाणी आहे सफ़ाई बि नथी कराई वञे मसला हल कया वञनि
5: कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो आहे वधीक जांच कई पई वञे

0: बख्शापुर में इंडस हाईवे ते वेन जो टक्कर लगण सबब अठन वरन जो नींगर फोत काठी पुल वट वेन जो टक्कर लगण सबब मोहम्मद मुराद पुट्र गाणो हयाती विञाए वेठो पुलिस वेन ड्राइवर के गिरफ्तार करे वरतो नींगर जो मड़ अस्पताल मुंतकिल ऐं शाशरो में बरसात दौरान विझकरण सबब गरीब धनार जूं 14 बकरी मरी वयूं गोड कीता बजीर में विझकरण सबब मुबारक बजीर जूं 14 बकरी मरी वयूं गरीब धनार पारां इंतज़ामिया ऐं वसवारनि खां माली सहायता जी अपील
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

गमन जी दुनिया में खुशियूं पिया गोल्हियूं, गमन जी दुनिया में खुशियूं पिया गोल्हियूं, मौत जे मुंह में जिंदगी पिया गोल्हियूं। गमन जी दुनिया में खुशियूं पिया गोल्हियूं, मौत जे मुंह में जिंदगी पिया गोल्हियूं। दुश्मनन जे दर ते दोस्त पिया गोल्हियूं, दुश्मनन जे दर ते दोस्त पिया गोल्हियूं। असीं बि केॾा अयाणा आहियूं उस्ताद, रहज़नन जे राज में रहबर पिया गोल्हियूं। GFM नेटवर्क प्रोग्राम आहे म्यूजिक मस्ती। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती सां करे मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। GFM नेटवर्क जा समूरा लिसनर्स जेके मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहिनि, उन सभिनी खां मुखातिब थींदे पुछंदुसि त कहिड़ा हाल अथव। ठीकु कयो, तबियत सही आहे अव्हां जी। उमेद मूंखे इहा आहे त अल्ला ताला तव्हां सभिनी ॾे बिल्कुलु ख़ैर ख़ैरियत कई हूंदी। असांजी दुआऊं बि तव्हां सां गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि। हमेशह वांगुरु दुआ असांजी इहा हूंदी आहे त अल्ला ताला तव्हांखे सदाईं ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। समूरियूं परेशानियूं तव्हांजी दूरि थी वञनि, तकलीफ़ूं तव्हांजी दूरि थी वञनि ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बाग बहार थी वञे। आमीन।

त मुंहिंजा मिठा साईं जी एफ एम नेटवर्क जे समूरन स्टेशननि तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो सकरंड मटियारी मातली मेरापुर इन्हनि सभिनी स्टेशननि तां हीउ जेको प्रोग्राम आहे इहो हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे जंहिंमें असां सां गॾु जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं तव्हां जे पसंद जी चूंड मौसीकी त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे हिन शो में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजो मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं उते वञी लिखो MRO खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते जी उस्ताद बुखारी जी शेर तव्हांखे मां प्रोग्राम जे आगाज़ में ॿुधायो त गमनि जी दुनिया में ख़ुशियूं पिया ॻोल्हियूं मौत जे मुंह में ज़िंदगी पिया ॻोल्हियूं त ज़िंदगी जो नालो ई ख़ुशी ऐं गम जो मेलाप अथव मुंहिंजा साईं कॾहिं इंसान जे राहुनि में गुल विछाइजी वञनि था त वरी कॾहिं कंडनि सां वास्तो पवे थो पर असल कामयाबी उहा आहे त इंसान ॾुखनि तकलीफ़ुनि ऐं नाओ मिंदुनि जे बावजूद ख़ुशियुनि जी तलाश जारी रखे उस्ताद बुखारी जी शायरीअ में बि ज़िंदगीअ जी उन्हनि हक़ीक़तुनि उमेदुनि ऐं इंसानी जज़्बनि जी ख़ुशबू जो इज़हार मिले थो गमन जी दुनिया में ख़ुशियूं पिया ॻोल्हियूं रुगो हिकु शहर न पर ज़िंदगीअ जो हिकु उहो वॾो फ़लसफ़ो आहे दुनिया में हर माण्हूअ वटि पंहिंजा ॾुख पंहिंजा मसला ऐं पंहिंजूं महरूमियूं आहिनि पर उन हूंदे बि इंसान जी दिलि ख़ुशीअ जी तलाश में रहे थी को मोहबत में ख़ुशी ॻोल्हे थो त को दोस्तीअ में त वरी को पंहिंजे औलाद जी मुस्कुराहट में त वरी को पंहिंजे वतन ऐं धरती जी ख़िदमत में ॻोल्हे थो ग़म इंसान खे कमज़ोर करण बदिरां जेकॾहिं हौसलो ॾिए त उहो ई ग़म इंसान जे किरदार खे मज़बूत बणाए वठो ऊंदाही राति केतिरी बि डिघी हुजे मुंहिंजा मिठा साईं सुबुह जो अचण यकीनी हूंदो आहे अहिड़ी तरह ज़िंदगीअ जा ॾुख ऐं हमेशह ज़िंदगीअ जा जेके ॾुख आहिनि उहे हमेशह क़ाइम नथा रही सघनि उमेद जो हिकु नंढड़ो ॾीओ बि न इंसान खे वॾी ऊंदाहीअ मां कढी सघे थो उस्ताद बुखारी जी शायरी जो हुस्न उहो आहे त हू आम इंसाननि जे अहसासनि खे लफ़्ज़ ॾेई फिक्र दोस्ती धरती इंसानियत ऐं उमेद अहम हैसियत रखनि था ऐं हू असांखे उहो अहसास ॾियारे थो त ज़िंदगीअ खे सिर्फ़ शिकायतनि सां न पर मोहबत ऐं हौसले सां बि ॾिसणु घुर्जे।

मुंहिंजा मीठा साईं, तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रिए एस एम एस। एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। मुंहिंजी प्ले लिस्ट में हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, मुमताज़ मोलाई जी आवाज़ में आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं। ऐं उन खां पोइ जेके तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि पढ़ंदासीं ऐं तव्हांखे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: भलीकार, तबुजा मिठा सही, तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे जेके रेडियो जा लिसनर्स, जीअं तव्हां मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहियो, उहे सिर्फ़ु ॿुधंदड़ न पर असांजे आवाज़ जी असल ताक़त अथव ऐं हौसले जो बि सरचश्मो आहिनि। तव्हांजो हर पैगाम, हर काल, हर राय ऐं हर मोहबत भरिया लफ़्ज़ असां लाइ वॾी अहमियत रखनि था। असांजो साथ जो सबबु असांजो आवाज़ ऐं अव्हांजे घरनि ऐं दिलनि ऐं सोचुनि ताईं पहुचे थो। असांखे फ़ख़ुरु आहे त असां वटि अहिड़ा प्यार कंदड़ ऐं वफ़ादार लिसनर्स मौजूदु आहिनि, जेकी हर प्रोग्राम में असां सां गॾु रहनि था ऐं ॿुधंदा रहनि था असांजा प्रोग्राम। छो त अव्हांजो असुल साथ ई असांजे नशरियात जो न असल सुञाणप हूंदी आहे। त उन्हनि मुठनि माण्हुनि जा मैसेजिस बि हिन वक़्तु आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदो थो हलां।

प्रोग्रामी हलूं था मैसेजनि जी तरफ़ त प्रोग्रामी जेको पहिरियों पहिरियों मैसेज आयो आहे न उहो आयो आहे किथां आयो आहे ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडो झंडो मोरी अच्छा उतां अदा कुर्बान वरी ख़ासकेली जंहिंजो मैसेज आयो अदा कुर्बान कहिड़ा हालनि तव्हांजा मां कुर्बान वञा थो तव्हां ख़ुशि आहे ठीकु आहीं तबियत सही आहे तुंहिंजी उमेद आहे त अलाह ताला तोखे ख़ैरियत कई हूंदी महिरबानी मिठा पहिरियों मैसेज तव्हांजो रिसीव थियो आहे मुंहिंजी प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऐं उमेद कयूं था दुआसी मट शॉप दर्स बाईपास रोड मोरो खां अदा हफ़ीज़ कहिड़ा हालनि तव्हांजा ठीकु कयो तबियत सही आहे अव्हांजी उमेद आहे त ठीकु ठाक हूंदा अदा जन चवनि था सलाम त वालेकुम असलाम गुलाब जानी छा हाल आहे जानी मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां फस्ट क्लास आहियां अलाह जा लख लख अहसान आहिनि खोड़ करम नवाज़ियूं आहिनि रब जूं चवे थो पूरा हफ़्ता इंतज़ार किया है आपके प्रोग्राम का सलाम टू ऑल लिसनर्स

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आज्ञा जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: Express PM. This transact is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular Mithi.
7: सिंध बार काउंसिल जे सदते सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ वकीलन जा मुख्तलिफ़ शहरन में मुज़ाहिरा खेरपुर ऐं रोहड़ीअ में वकीलन अदालती कारवाइनि जो बाइकाट करे मुज़ाहिरा कया। वकीलन जो चवण आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी। मेयड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट खिलाफ़ प्यादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी, एजाज कॉलोनीअ में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट खिलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त टिनी कॉलोनियुनि में न घिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे, सफ़ाई बि नथी कराई वञे, मसला हल कया वञनि। खानपुर में यूथ एसोसिएशन जे सॾु ते वधंदड़ बदअमनी ऐं भताखोरीअ ख़िलाफ़ रैली ऐं धरणो। शहरनि ईदगाह खां उर्दू स्कूल ताईं रैली कढी धरणो हयो। अॻवाननि चयो त पुलिस जी नाहालीअ सबबि खानपुर शहर ऐं भरपासे में बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। पुलिस जे सरपस्तीअ में मंशा जो विकिरो ज्वाज अॾा ऐं व्याज हली रहियो आहे, नोटिस वरितो वञे। भिरिया सिटी भरिसां पसनि जी शादीअ तां नौजवान जे घर ते मुबैना हमिलो। फायरिंग में संदसि ज़ाल ज़ख़्मी। ॻोठ अली ख़ान सोलंगीअ में हथियारबंदनि मुबैना तौर अलताफ़ सोलंगीअ जे घर ते का कई। जवाबदार नारी आसत सोलंगीअ खे गोली हणी ज़ख़्मी कयो। मुतासिरनि चयो त पंज हथियारबंदनि फायरिंग करे घरवारीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस चयो आहे त जवाबदार अॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे, वधीक जांच कई पई वञे। ऐं छाछरो में बरसात दौरान विज किरण सबबि 14 बकरियूं मरी वयूं। ॻोठ कीता बजीर में विज किरण सबबि मुबारक बजीर जूं 14 बकरियूं सड़ी वयूं। धनार पारां इंतिज़ामिया ऐं वस वारनि खां माली सहायता जी अपील। नगर पार्कर भरिसां विज किरण सबबि पोरियत जूं झूपड़ियूं बि रख थी वयूं।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
9: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई। زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
10: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
6: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज.
7: तेरी खुशबू आए जदे सोना गुलड़न मिटड़न तो जो कोई तो सबब हुंदो.

मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था। बदिरे SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888-1

दोस्तों ने कुछ मैसेजेस आने हुए भी प्रोग्राम में शामिल करना लोग दूरों भेण का शौकत अली भेण पानी प्रोग्राम दे पे अदा शौकत जाने के हाल अथई ठीक है तो वैसे ही हाथ जी उम्मीद अल्लाह ताला तो खैरियत कई हूँ शौकत से गड है चवन था प्रोग्राम ढो सुठो है मुझे मिठा सही मास्टर मंजूर के कलाम जता जन फरमाइश कई है जी डेडिकेट कन था शाजेब भेण जरियाब भेण के मेहरबानी अदा शौकत तक मैं स्पेशली पे प्रोग्राम में भली कार चवान तो असा गड है केर है केर है अच्छा आई अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम मला अब्दुल रहीम मला किथा का चे अस्सलाम वालेकुम साईं केड़ा हाल आहिन वालेकुम अस्सलाम भा बिल्कुल ठीक ठाक आए उमें तो खुश हूं जी हाँ बिल्कुल अला जाकरम मां बिल्कुल ठीक ठाक आया अदा जन चवन था प्लीज प्ले मौला दिल अहड़ी दिनी अदो है अब्दुल रहीम मला अदा अब्दुल रहीम किथा का लिखी रहा है या असा का खबर कोने का बाकी यो है तक पसंद जो सॉन्ग जरूर बुधाई मुझे मिठा सही मेहरबानी है तीन स्पेशली तक प्रोग्राम में भली कार चाह तो शहर सगू का मामा छुटल हिस्पानी मुझे प्रोग्राम बुझी रहा है राशिद अली हिस्पानी गए चवन था लाजवाब प्रोग्राम है मेहरबानी अदा सगू वा भा मुझे ख्याल में पे दफो असो शो में शामिल थे इन तेजे प्रोग्राम में भली कार चाहूँ जुनरी का खालिक लाशारी प्रोग्राम बुझी रहा है फरदाना परवीन की आवाज में अदा जन की फरमाइश है मेहरबानी मिठा अब्दुल्ला महर मीरपुर खास का प्रोग्राम बुझी रहा है मेहरबानी अदा अब्बास महर अस प्रोग्राम बुझी रो है अदा जन किथा बुझी रहा इन की का खबर को अदा जन मैसेज में पांजो सिर्फ नालो लिखो है बाकी बो लिखो अब्दुल हफीज सोलंगी मोरो शहर का प्रोग्राम बुझी रहा वही मेहरबानी मुझे मिठा सही गोठ हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मोरी का कुर्बान खास के लिए प्रोग्राम में बुधे लख एहसान लख कुर्ब सभी जहा

0: टक्कर FM 88
1: टक्कर की आवाज
2: पांजे शहर या गोठ जो नरवाई पने पसंद जो सॉन्ग लिखी करे मोकलियो असान हां 888 1 ते

0: 88
1: सिंध की आवाज 12:35 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
4: अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पहंजे पसंदीदा रंग सा पहंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐं वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पहंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु पहंजे वेझे स्टोर तां आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
5: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मौत
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
6: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मुनवर मौलाई जी कलाम जी फरमाइश की है। मुनवर मौलाई जो कलाम प्रोग्राम जो वक्त खत्म थे वो है। नेक्स्ट सैटरडे जरूर बुधाए जो वायदो हों, पर शर्त यो हों तो असा मैसेज कंदा, छो जो मुखा याद भी विसरी वी अव असा गदा है। प्यारो भा चवे तो अस्सलाम वालेकुम अदा को और FM की टीम को अदा पाक खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अदा अल्लाह साई वालेकुम असलम, अल्लाह साई तवा के खुश रखे, आबाद हुजो। असो दुआओं तवा सा गद है हमेशा हमेशा जलाए, सिर्फ तवा सा न बल्कि जी भी असा लिसनर्स उन सभी सा असो दुआओं गदा है। अदा गुलाब लगारी शहर आए उन भरमी आए बो गोठ, अच्छा गोठ जो है उन नालो है बिशाम खान रिंद, उतां शायर आहे गाज़ी खान रिंद। अदा कहिड़ी शायरी नमल थोरी कई अथई मुंहिंजा मिठा साईं, थोरी शायरी बि लिखी मैसेज में मोकिली थो करां, तुंहिंजी शायरी मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कयां। उन सां गॾु रिज़ान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद ऐं नंढड़ी आहे कोनेन ज़हरा। चए थो आपका शो सुन रहा हूं, शो लाजवाब है। आई हमीद अंसारी जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई है त मुंहिंजा मिठा साईं हाज़ुर, तव्हां खे बि तव्हां जे पसंद जो सॉन्ग असां ज़रूर ॿुधाईंदासीं, पर नेक्स्ट शो में, छो जो हींअर वक़्तु प्रोग्राम जो थी चुको आहे तक़रीबन पूरो। ऐं इन खां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे जाम खान बबर, अब्दुल रशीद बबर ऐं फरज़ाना परवीन जी कलाम जी मुंहिंजनि भाइरनि फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं फरज़ाना परवीन जो कलाम प्रोग्राम हिकु दफ़ो हलाए चुको आहियां। इनशा नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हांखे ज़रूर तव्हांजे

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular, मिट्टी जो मान

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदियूं मथे सही मुदो वधी वियो ख़बर में तवार वारियूं शयूं बि शामिल।
1: हाउस में दाखिला ते पाबंदी लॻाए छॾी। पाबरन में एमएस ते बिछमाज वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त टई इदारा लगातार इंतज़ाम ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़्याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।
0: सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। खैरपुर ऐं रोहड़ी में वकीलनि अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट करे मुज़ाहिरा कया। वकीलनि जो चवण आहे त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी।
1: चक जे कारे तकरार तां जतोई धुरन में जेड़ो हिकु ॼणो क़त्ल, औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। घर पांजा वारे इलाइक़े में पुराणे तकरार तां कं जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरन में जेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो। लाश इस्पताल मुंतकिल, धुरन में तकरार तेज़ थी वियो।
0: मेहड़ में शहरियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ प्यादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त टिनी कॉलोनीज़ में न गिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे, सफ़ाई बि नथी कराई वञे, मसला हल कया
2: वञनि।
3: मटियारी के हो तो आवाज सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
5: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।

0: और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6। माल आपकी स्किन के लिए, आपकी जिल्द के लिए और आपके लिए कितना ज्यादा और क्यों जरूरी है, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मौजूद है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में ना सिर्फ इजाफा ला सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत रहना और खूबसूरती की हिफाजत करना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पुरकशिश बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें होंगी, आप लोगों को गाने सुनाए जाएंगे, आप लोगों के साथ मजे किए जाएंगे और जनाब एंटरटेनमेंट का फुल वाला डोज दिया जाएगा, जो कि साथ की अगर बात की जाए तो साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ, आप हमारे साथ। बिल्कुल जी, तो आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपनी हाल चाल बताते जाइए, सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत उनके से ही आपकी हालत, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे दो घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और की स्माइल आने का काम करेगी भाई जानिए सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा और प्रोग्राम में आगाज के फौरन बाद ही जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो आइए जी एक बहुत प्यारा सा जरा कलाम एंजॉय करते हैं, तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

बिल्कुल आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से लोग मौजूद हैं जनाब। प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो भी जरा आप लोगों को बताएंगे, और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज बताने वाली है ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज जो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा वो हाँ जी पहेली होगी। ओके, सो आज की जो पहेली होने वाली प्रोग्राम की वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। हाँ जी, ये क्या चीज हो सकती है जिसके दांत तो बहुत है लेकिन वो खा नहीं सकती। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान जाएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनकी स्किन के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ी सी मालूम आप लोगों को होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट चले जाएं तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके आएंगे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब कुछ और ले जाएं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले जाएं, ये ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा आजकल चर्चा है। तो आपने उसे बोलना है भाई साहब थांबा थांबा, हम सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करने आए हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जनाब जल्दी से परचेज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी 312 50 25 970 आई यो नंबर आ 033-27-38-4309 बुरी 312 73-84-309 ये नंबर साइन जी डायल करी था पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो अवेलेबल करायो पांच खूबसूरती जो ख्याल रखो हमेशा हमेशा जिला खूबसूरत ही वे, छो तो खूबसूरती हासिल करण अजकल ढी आसान थी वही है, तमाम भी बाबा उन फायदो हासिल करो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीक है। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए जो है ना वो बहुत सारे फायदे लेकर आई हूँ। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले मिलने वाले हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आपकी स्किन के अंदर जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छा कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं कि आपके चेहरे को एकदम से खूबसूरत बना दे, प्यारा बना दे और पुरकशिश भी बना दे। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो घबराने की और टेंशन करने की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हम नहीं लगा पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और जना मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और अब तो भाई मार्केट में डी स्किन का फेस वॉश भी आ चुका है, फेस वॉश ने भी एंट्रियां मार ली है, तो वो भी आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि फेस वॉश जो है ना वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ना ऐसा ड्रीम होता है कि भाई हम भी अच्छा सा कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो खूबसूरती है ना वो भी जरा अच्छे से निखर कर सामने आ जाए, क्योंकि कई मरतबा हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर है और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ जी, फुल मोकल आ तवा के, तो लगाईंदा रहो, ये साखे बुधाईंदा रहो तो तवा किथे किथे अप्लाई
कई आहे अच्छा किथे किथे अवेलेबल कराई आहे ऐं तव्हां अप्लाई कई आहे या फिर कोन अच्छा सवाल जेको पुछो आहे न सवाल जो तव्हां मूंखे जवाब ॾींदा हलो ऐं जल्दी जल्दी असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदा हलो जिन माण्हुनि हाणे ज्वाइन कयो आहे हिननि खे ॿुधाईंदासीं बाबा टॉपिक अॼु जे प्रोग्राम जो इहो पुछो आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ॾंद त इलाही सारा आहिनि पर उहा कुझु खाई नाहे सघंदी हांजी और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आप या कैसी हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे बहुत शुक्रिया जी आपको भी वेलकम कहते हैं नजीर खोसो हमारे प्रोग्राम में बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं कहते कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार है ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है हाँ जी आप सही कह रहे हैं अच्छा फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं विसरे सारो लोग शाल न विसरे तू नांडियो आहे साह में अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम खुश आयो सफा चाक सलेटर कलम मस्त जी दवी असां बि रुलंदा फिरंदा नेठि अची वियासीं प्रोग्राम त लाजवाब आहे हमेशा जीअं अवां वांगुरु बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको अच्छा फरवा कहती हैं आप ही अर्ज मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि मैं कितनी आपकी इज्जत कर ओके जी थैंक यू अच्छा साजिद खान अच्छा साजिद अली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम कैफा हाल प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह सिद्रा मुस्कान थैंक यू जी थैंक यू आपको भी वेलकम हो गया मुजाहिद मलिक लिखते हैं कि फाइनली आ गई सिडो बड़ा वेट करवाती हो आ तो जीशान का सॉन्ग मेरा रांझना सुनाना मानो बिल्ली अच्छा सुना दो मानो बिल्ली मको बोल रहे हो मानो बिल्ली मत बोले और गाना मेरा रांझना शायद कल ही तो हमने सुना था आपने नहीं सुना था क्या अपनी पसंद का गाना नहीं सुनते हो फरमाइश पर क्यों करते हो अच्छा ये मोहम्मद जमान हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून स्वीट बुआ जी वेलकम वेलकम कहते हैं आपको भी लिखते हैं ऑसम शो थैंक यू अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं मैं घोटकी से सुनता हूँ रोज आपको और अजहर भी आपको सुनता है सलाम कह रहा है तुम्हें और आपको अजहर को भी बोल दो अच्छा वेलकम बोल दूं ठीक है अजहर आपको भी वेलकम हो गया और मुजाहिद आपको भी वेलकम हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए घोटकी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं सालार वेलकम हो गया जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं कहते हैं लाडली पहचाना या भूल गई जीजी आपको पहचान गई आप बहुत अच्छे और पुराने लिसनर हमारे अब्दुल रजाक भी सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन कैसी हैं आप आपका प्रोग्राम नाइस है आपकी आवाज की क्या ही कहने माशाल्लाह

0: अभी इस दिन जरूर इस्तेमाल करेंगे और सॉन्ग सुनना चाहते हैं डेडिकेट अब्दुल रजाक मुश्ताक अहद. ओके ओके भाई सबकी फरमाइशें लगाएंगे जी. जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून. कहती माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो यू एंड मी. अच्छा समझ गई, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू के साथ. और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहां से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया, सोचा एक फीडबैक कर दूं. अच्छा सोचा आपने, अच्छी सोचे माशाल्लाह. चलिए अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है. और यहाँ पर बहर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी ये मोहब्बतें हैं, आप प्रोग्राम सुनते हैं, फीडबैक करते हैं. और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आप मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक. टाइम हुआ है जी कमर्शियल का और उसके बाद आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट. रहिए और रहिए.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो.
2: इट्स 1:30 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम.
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow nivi duniya palor rawanwi khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi no padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takolo jawab war kawai aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki war kawal mahirawai زکه چه هم دغا ساس کی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کس زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل مازوری.
7: हाँ अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिंजी स्किन खे दियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी. बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो
1: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अगर जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माजुली मटियारी नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है. बिल्कुल जी जनाब खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते ये तो जरा बात ही नहीं बनती ना. तो अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं हाँ ये बात बन रही है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इजाफा इसलिए लाने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है. क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट मिलने वाले जो कि आप लोगों को किसी महंगे से फेशियल से भी शायद मिल पाते हो. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं माइक्रो बीड्स हैं अल्फा आर्बुटिन है कोचिक एसिड है ग्लूटाथायोन है. बिल्कुल ये सब चीजें सुनने में ऐसा महसूस होता है वाइब ऐसी आ रही है कि भाई ही तो डाढ़ो मतलब महंगो प्रोडक्ट हों अड़ी काफ़ी गाल कोने का महंगो प्रोडक्ट ना ही बाबा मुनासिब कीमत में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल का फौरन बाद ही तव्हांखे अड़ो जबरदस्त निखार मिलो अड़ी जबरदस्त ब्यूटी मिली तव्हां पाण ही चवंदा आए हाय मज़ा ही अची वया. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार थियल है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी हर स्किन के हिसाब से तैयार थियल है चाहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिव है कॉम्बिनेशन टाइप है नॉर्मल है ऑयली है या जै भी टाइप की तव्हांजी स्किन है हर स्किन के मथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो. और चाहे आप लड़कियां हैं लड़के हैं मर्द हजरात हैं खवातीन हैं हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतज दे रही है की स्किन के ऊपर. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी परफेक्ट खूबसूरती के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा लेकिन जो आपको नंबर बता रही हूँ ना प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और नंबर डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिलनी चाहिए प्रोडक्ट ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं. क्योंकि ये चीज भी बड़ी आसान सी हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर तमाम प्रोडक्ट्स वो मिल रहे हो जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो चाहे आप किसी भी एरिया से हैं किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है किसी भी गांव से आप हमारा शो सुन रहे हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारी आवाज आप तक आ रही है तो मतलब आप हमारे इस प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं. तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का अवेलेबल कराइए उसके बाद परचेज करते जाइए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप जानते हैं जनाब कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इतना जबरदस्त इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप ये दोनों प्रोडक्ट परचेज करेंगे चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो लगाने के बाद और परचेज करने के फौरन बाद ही आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार की गई है आपकी खूबसूरती में निखार लाने के लिए परफेक्ट फेस वॉश साबित होने वाला है. जो लोग कहते हैं कि भाई हम साबुन नहीं लगाते हैं साबुन से थोड़ा सा मतलब आपको मसला होता है आप चाहते हैं कि भाई कोई हमारे पास अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए तो फेस वॉश में अच्छा सा फेस वॉश अगर आप तलाश कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है और वो भी फॉर एवर के लिए. तो डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी मॉइस्चराइज रहेगी और क्लीन भी रहेगी. तो डीपली क्लीन अगर आप अपनी स्किन को करना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप ही के लिए है. डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं. जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते जाइए पोस्ट को जरा लाइक और शेयर किया करें. लाइक नहीं करते हैं आप इतनी कंजूसियां हाय अल्लाह यो सही कोन अथव. अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 0332738 4309 बुड़ी 332 374 309 और बो नंबर आ 0312
50259 07 ॿुड़ी 312 50 25 907 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे ग़रीबी जनरल स्टोर ते चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तव्हां इज़ीली अवेलेबल करायो तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी तव्हांखे काॾे ॿाहिरि पवंदी बसि तव्हां वञो पंहिंजे ग़रीबी जनरल स्टोर ते ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हुजे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा कमाल ई कमाल आहिनि बाबा इस्तेमालु कयो जी तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ छो ज़रूरी आहे अच्छा मां तव्हां खां सवाल पुछियो आहे सवाल इहो पुछियो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो वो क्या चीज है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खाती कुछ नहीं है हाँ जी और इसी के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं आपके लिए अच्छे अच्छे गाने मैंने जरा लिस्ट में लगाए हैं तो आइए जरा हम गाने भी सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस और फीडबैक्स की जानिब भी आ जाते हैं आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और जो कंजूस लोग पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं ना अरे भाई कर दिया करें कोई पैसे नहीं लगते तो लाइक कर दें शेयर कर दें बहुत सारे लोगों को बताना है कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रिक एंड

भैया की नजरें कितनी तेज है ना, कसम है मैं कभी कभी थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ, मेरी लिसनर्स इतनी तेज है। अच्छी बात है, साबित कर दिया मेरी लिसनर्स है।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या फिर अभी तक कर रहे थे आप। लिस्ट में आइए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वालों की लिस्ट में आइए। और जी साथ साथ नदड़ी की आवाज से लग रहा है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यूं कि नहीं, मैं बिल्कुल फिलफाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत दिनों के बाद शायद सुन रही होंगी इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं चाचा कैसे हैं। अच्छा ये हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम कैसी हो, ये सॉन्ग चलाना दिलबर का। वैसे ये कॉपी सॉन्ग है तो आपके प्रोग्राम का वो क्या बोलती हो ना टेम्पो भी खराब नहीं करेगा। चले ठीक हो गया, मैं देखती हूँ मुझे मिल गया तो लगा लेते, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा जरा मुझे लिंक शेयर कीजिएगा।

प्रोग्राम वाइज एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बना देगी ऐसा खूबसूरत जैसी खूबसूरती आप हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती को पहचानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स भी हैं। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको ऐसे रिजल्ट देने वाली है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जल्दी जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इनो। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती चाहिए वो भी मुकम्मल वाली। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपके जल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपके एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और हाँ, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

साजिद अली बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, जामिन का गाना लगाएंगे और बहुत अच्छा वाला गाना लगाएंगे, ठीक है। चाचा कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अपनी आवाज में सॉन्ग तो सुनाएं, मैं कोशिश करूंगी आपको गाना सुनाऊं। और कहते हैं कि हवाओं में, अच्छा ये वाला सुनना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई दूसरा ना सुना दूं? अच्छा नजर मोहम्मद भटिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज मेरी पसंद का सॉन्ग चलेगा सनम आरवी, मैं कोशिश करती हूँ जी। और फहीम भाई कहते हैं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं कदी की तरफ निकला, सोचा तेरी शिकायत बस कर दे। डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और नसीम गुलाम दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम। विलेज अली बख्श जकड़ो खां, आपका शो आपकी तरह है बहुत अच्छा, और हम नूरियाबाद वाले वेट करते हैं। किस चीज का? मेरे प्रोग्राम का, सच्ची बता दे।

क्या बात है जी, क्या बात है। आपके कमेंट्स ऐसे धड़ाम धड़ाम आते जा रहे हैं, ऐसे पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा। जाहिद अली बुर्दी कहते हैं ब्यूटीफुल एंड नाइस एवन शो सिर्फ 88 पर सदरा मुस्कान गुल गुलाब जो जियो करे से अल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली खुसू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अटियारी से आपने हमें ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी कहाफुल्ला मेथलो हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम जी। कहते हैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? परवा आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी। रशीद खुसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं।

ओके जी, क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद है वो सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको वो खूबसूरती मिल रही है जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, लेने में आसानी हो जाएगी ना, ये इसलिए कहती हूँ। तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उनके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कर आप सूरतियाँ हासिल करते रहिए।

अच्छा मोहम्मद अल खोसो भाई और बाबल खोसो अयूब भट्टी कहते हैं हमारा प्रोग्राम सुन रहे, बहुत शुक्रिया जी। और साजिद भाई लिखते हैं कि कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना, अगर निभा सको तो चलना उस राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और नसीम भाई लिखते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी लगती है। क्या बात बोल दी। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन है, हमने यूज की है। जिस बहन भाई को गिफ्ट चाहिए हमसे राबता करें, मैं सबको शो सुनने वालों को गिफ्ट करूंगा। जिसको गिफ्ट चाहिए मत करें भाई, सबको बोलें भाई अपनी अपनी लें। ये मानन के थोड़ो मतलब जेको आ ना इंडिपेंडेंट बनायो, वो मतलब आसरे में न रहन। तो आसरा अगर तुम रखंदा न, ये आसरन वारियूं चीजूं ॾाढियूं कमजोर हूंदियूं आहिनि। सो भाई पाण वठो गिफ्ट जे आसरे न लॻो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं सुहिणा थी वञो।

हाँ जी, अगर आप भी मैजिक दिखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको इतना खूबसूरत सा निखार मिलेगा कि आप खुद ही कहेंगे जनाब क्या बात है, क्या बात है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

अच्छा मलेज इकबाल लाशारी हमारे साथ हैं, बिल्कुल खास है आप हमारा शो सुन रहे, कहते सिद्रा सवाल का जवाब है बिल्कुल ओके। न्याज भट्टी कादरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सलाम अदर। अच्छा मटियारी खान तवां असांखे ज्वाइन करवाए भांजो मोहब्बत वाइन मोहब्बत सां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा कहते हैं तोखे ख़बर आहे चाचा गाननि जो शौक़ीन आहे, तू गाना प्ले कर। अच्छा ठीक आ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कराए डींदुस, डोंट वरी। चले अच्छी बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिएगा। और उन खां अलावा एसन कहते हैं मेरे कॉमेंट से, हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है। चाचा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने धूम मचा दी है, हाओ को शक को नहीं नगाल में। आमिर खान महेश्वर हमारे साथी, वालेकुम असलाम। सरमन सिंधी जो गानो तवां के बिल्कुल बुधराइंदासी मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पिया। निजाम भट्टी कादरी भाई थैंक यू सो मच आप हमारे साथ है। और जी आपके साथ है नियाज भट्टी, निजाम

ख्याल ना रखा जाए, मुनासिब सी केयर ना की जाए, चेहरे की स्किन जाहिर सी बातें डल होने लग जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझाने लग जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई खूबसूरती हमें कैसे भी करके अब हासिल करनी है, क्योंकि टोटके लगाना वाले प्रोडक्ट से आप बेजार फार्मूला, तो डॉक्टर्स होते ना स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स, और ये इतना इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरत के साथ ऐसा होता है ना, खूबसूरती के साथ साथ आपकी जल्दी जो होती है वो एक अच्छी सी केयर भी जा रही होती है, और जरूरी यही हो जाता है कि आप अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। रोजमर्रा इसकी बनाने रह सकता है और आपकी जल्द को नरम मुलायम और सॉफ्ट रखेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन केयर जो है वो बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह अगर आप अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरती को जरा निखारना चाहते हैं, खूबसूरत खूबसूरत रहना चाहते हैं, चेहरे को ताजगी देना चाहते हैं और हमेशा ग्लो में रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ये बात बड़ी मजे की और कमाल की बताने लगी हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगे, आप मर्द हजरात भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों की स्किन से रिलेटेड है जनाब, सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती का जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का अवेलेबल हो चुका है। और फेस वॉश अगर बात की जाए तो फेस वॉश भी कमाल का प्रोडक्ट है, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो सीरम होता है ना ये इतना कमाल का होता है, आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा के लिए क्लीन और खूबसूरत बना देता है। और दिन भर की मसरूफियात के बाद जब चेहरे पर थकन और ये तमाम गर्द गुबार आके या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आके चेहरे पर जमा हो जाता है, और ये सब चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ने लग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोजाना इस्तेमाल से मुराद यही है कि आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइएगा, ठीक है, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया, और रात को सोने से पहले तो फेस वॉश लाजमी किया कीजिए। और रात को फेस वॉश जो होता है ना वो बहुत सारे जल्द के मसाइल से आपको दूर रखता है, तो रात का फेस वॉश मतलब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए, सुबह के वक्त लगाएं या दिन में लगाएं या रात में लगाएं, हर वक्त जब भी आप लगाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वाकई कितना अच्छा

अच्छा ठीक है जी। अच्छा फिर दोस्त भाई सागो मैसेज तवां दोबारा शेयर करे छड़ो आए सोने जे लाबी मोहब्बतूं तवां जो लख लख थोड़ा ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कोन मुखे बुधाए जो। और ये हमारी साथी भाई मैं जो भी हूं पर एक बात की हम यूजर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तो हमारे लिए सॉन्ग लगा दो मास्टर मंजूर का सॉन्ग है हीरो जेड़ो अच्छो ओके ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का थैंक्स शो एंजॉय कर रहे हैं भाऊ बहुत शुक्रिया प्यारे भाऊ और कहते हैं भाऊ थोड़ी हाँ सर हाँ सर।

अच्छा गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ कहते बाजी सदरा आपकी पहेली का जवाब है बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही और कहते हैं। अच्छा गुलाम हुसैन उमरानी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं। अच्छा मैं कोशिश क्या थी भाजला गानो हलाइंदा सी मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी जी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है बहुत बढ़िया जी इस्तेमाल करते रहिए ऐसे ही। मंजूर अली खास के लिए है झंडो मरी से आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है मंजूर भाई आपको वेलकम हो गया। ये लिखते हैं कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की उसे क्या मिटाएगी गर्दिशी जमाने की ये पोइट्री आपके लिए थी भाऊ बहुत बढ़िया। अब

बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा तो दीवाना थींदा के फजली हमारे साथ है। फजली के दी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो जानू भी ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। तेरे सलाम तो माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके। और ये भाई साहब लिखते हैं, हेलो सिद्रा आपी, हेलो टू यू। और कामरान भाई हमारे साथ हैं। कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और इन्होंने लिखा है, अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खासी कहते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह। ये जो आगे आपने लिखा ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बस आप भाइयों की मोहब्बतें कि मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना तो ऐसा इन काबिल का थे बाबा। अच्छा ये मौजूद है, हेलो सिद्रा आपी, मैं जेबुन निसा, आंसर आपने दिया है बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत था, ठीक है। जेबुन निसा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है, प्यारी दिलबर दोस्त, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपकी तबीयत मुझे लग रहा है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ एंजॉय करें प्रोग्राम को और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करती रहिए।

हाँ टाइम बुधा चूं था बस पंद्रह में आयो ऐसा क्या कहते सॉन्ग जो ऐसा यो गानो अगर इन प्रोग्राम में हली वो तो ठीक है ना असा पंजी बजे वाले प्रोग्राम में सकून असा बुधासी सही अच्छा रात तो इस्तेमाल कर सवा सोना सोना थी वेंदा।

0: 2:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे brightness.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी. खूबसूरत

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی، زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوری.
3: امی بدو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6
1: किताबन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए हैं जनाब। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, सारे लोग खूबसूरत हो जाए, बस आप ही पीछे रह जाए। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी गई है, लेकिन फिर भी आप फर्ज कर लीजिए अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है तो आपको जो पूरे प्रोग्राम में नंबर्स बता देना उनके ऊपर बस रब्ता कर लिया गया। या तो आप कॉल करेंगे या तो फिर आप मैसेज करेंगे, उन्हें बता दीजिए कि आप भी चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए हमारे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम। या फिर ऐसा वाला सीन है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन फेस वॉश नहीं अभी तक अवेलेबल हुआ, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर रापी जर्नल स्टोर अवेलेबल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो पहले से अवेलेबल हो चुकी थी लेकिन फेस वॉश अभी अवेलेबल कराना बाकी है आप लोगों ने, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए।

ओके जी, अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं उस्ताद बुखारी तो में आहे नाज आहिन, तो में उहे नाज आहिन, तो में उहे अंदाज आहिन, जिन लाइ असांजो दिलियूं सदक ऐं न्याज आहिन, ज़ुल्फन खे न लोड ईअं वाव में मिठा, केतरा ई दिलन जा हिते राज ऐं न्याज आहिन। वाह वाह वाह वाह, शायद सही रीड कर ली मैंने। अच्छा, हुन खां अलावा फ़हीम कहते भाऊ आपने खोला है क्या बात है जी, अच्छी बात है, चलिए अब दुकान खोलीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसने मिलती हो। अच्छा, रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।

0: हां जी बिल्कुल बिल्कुल लाड़काणी वारे माण्हू जी त ॻाल्हि ई अलॻि आहे. लाड़काणी में चवंदा आहिनि घणी सूं आहे, उहो इन जे करे छो त लाड़काणी वारा माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा आहिनि. अगरि तव्हां बि सुहिणा थियणु चाहियो था त तव्हां बि बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे सघो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतनि में मिली रही आहे, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे, डी स्किन जो फेस वॉश अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त उहो बि तव्हां करे सघो था. पोस्ट हिन ताईं तव्हां लाइक ऐं शेयर नाहे कयो न, जल्दी करे वठो बाबा, टाइम असां वटि बचो वञी सफ़ा थोरो आहे. सो हिते ही ओएसटी लॻायो आहे मूं.
1: कसम से आँख न मिले गुम से.
0: और निदली काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आई थी और ओएसटी की फरमाइश कर दी, हम फरमाइश पूरी ना करें तो जरा मजा नहीं आता. सो ये निदली को डेडिकेट जाता है.

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं, चाहे आप ड्रामा देखें या ना देखें, लेकिन गाना हुआ आपको अच्छा लगता है जी। ये गाना भी उन गानों में से है। बहुत ही खूबसूरत सा ओएसटी से हमने एंजॉय किया। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यूज करते रहिए, और अपने दोस्तों को जरा मशवरा दीजिए वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहे। जयपाल भाई कहते कि भाऊ थोड़ा सॉन्ग सुनाया, थोड़ा थैंक्स, खुश रहे। पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में फरमाइश किया करें। और हिदायतुल्लाह कहते हाय ये ड्रामा इतना अच्छा है, सच्ची बताए। किशोर भाई कहते अदा मोमट कोई मसलो ना है, बाकी अगर मुखे खबर पई हिता को मसलो आ तो सुठो न थींदो, आ रोड ते वेही रहंदस पो जेको थियो। हिता की मसलो थी सके तो बियन माण्हू जा कॉमेंट अचन था तवां सा ही मतलब प्रॉब्लम हूंदो, त यो कीअं थो थी सके न अचन त मतलब सफा न अचन। वरी प्रोग्राम जो लास्ट में अचन कॉमेंट स्टार्ट थियन था, अलाई छा गाल है, गाल थोड़ी मतलब समझ में कोन पी अचे, मैं डिसी वेठान थी, प्रॉब्लम समझ में अची हो तो थोड़ो हल करे वेठूंगा, ठीक है।

जयपाल भाई वो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था मैंने। अच्छा जिब्रान, वैसे 2-3 सालों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं तो जाहिर सी बात है भाई इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है ना। वैसा मेरा वाकई मूड नहीं रहा जैसा मेरा पहले हुआ करता था, तो बहुत सारी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती है, इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है। मेरा वही वाला फेज चल रहा है अब।

शुक्रिया जी। अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर एक रूम में 100 लोग बैठे हैं उनमें से 99 लोग हमारे खिलाफ हो और एक मेरे साथ, तो मैं उस एक पर तवज्जो देता हूँ और ये बात रूम के लिए नहीं थी। आई नो किसके लिए जी। मैं भी दरअसल ऐसी ही हूँ। और ये आपकी बात आपको इसलिए सबसे अलग बताती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाएं, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी हो जाए। मजीद खूबसूरत हो जाए। और कहते हैं कि आओ कमेंट कयान थो तो ऑप्शन अच्छे थो, तो फिलहाल हेते कमेंट न थो करे सकी। रियली यू, मतलब लास्ट में मेरी ऑप्शन खुली बने थो, ये क्या जादू चल रहा है। अच्छा मोहम्मद अली भाई आपको भी वेलकम हो गया आप हमारे साथ। इसी के साथ आप लोगों से जी इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। बड़ी तरह से मुलाकात पंच बजे वाले प्रोग्रामों में थी जी। नहीं नहीं जयपाल भाई, वो बस आपके लिए तो बिल्कुल नहीं था। अब्बास मेहर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और कहते हैं जयपाल भाई अब नहीं नहीं कर सकते, मजाक मस्तियां किया करें, अच्छी बात है। पांजा पान भी तो आयो। चले सो वरी मिलूं था तुम्हारे साथ। पांजो इलाही सरो ख्याल रखना, किसी का गलती थी उजे तो माजरत कयूं था। सो मोकलानी ना है बाबू, सिन सलामत सा सलामत पांजो ओ हिनो सरो ख्याल रखजो। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: में पंज दहशतगर्दन के जानम भेड़ो कयो वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारां फोर्सिस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। MKM सां वागयल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जे क़याम बाबति कानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त असां इंतिज़ामी यूनिट जा हामी आहियूं। इंतिज़ामी यूनिट जे क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार गंद कंदड़ ॿुधी छॾनि गारनि

ईरान सां जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग जे खात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञे हा। सदर ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदी मरण वारे बिलनि ते सहियूं बि करे छॾियूं।

जा रहे तो जवाब देना है जी भरपूर सलाहियत रखे तो मुल्क दुश्मन अंसरन के मोह देने ला 3 लख का जानसरन के सरगर्म कर ट्रंप CNN समेत मीडिया के टिन इदारन ते व्हाइट हाउस में दाखिला ते पाबंदी लगाए छी पाबंदी हेठ आयल इदारन में MS नाउ ए पॉलिटिको नाले खबरू इदारे भी शामिल समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो है ते टई इदारा लगातार इंतजामिया खिलाफ कूड़ियां ख्याली खबरू हलाए रहा है।

बादला निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं। पेट्रोल तां लेवीअ जी खात्मे ताईं लांग मार्च ख़तम न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हुकमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़तम करण लाइ तयार न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे, ही अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहिनि। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ कराचीअ जी सिटी कोर्ट में कराची बार जो आल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज़ वड़ाए अरशद शहर हसीब जमाली समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जे बार जा उहिदेदार शरीक। बदीन बार जे वकील अॻवान अमीर आज़ाद पंवर चयो आहे त सिंध जे माण्हुनि लाइ सिंध ज़मीन जो टुकड़ो न पर संदन माउ आहे। सिंध जे माण्हुनि जे जज़्बनि अहसासनि खे न खेॾियो वञे। वकील अॻवान फिदा ॼामणो चयो आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। विरांगे वारी साज़िश में मुलविस माण्हू गदार हूंदो। सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद, खेरपुर ऐं रोहिड़ीअ में अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। वकीलनि जो चवण आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿ ॼणा क़तल, हिक ॼणे जो लाश हथ, क़तल जो शक ज़ाहिर। चकवे जो कारे तकरार तां जतोई धुरनि में जहिड़ो, हिकु ॼणो क़तल, औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। घर पांजा वारे लादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दोदो जतोई मारिजी वियो। टंडरो मोहम्मद ख़ान में अदालती पेशीअ तां वापसि वेंदड़ नौजवान क़तल। करीमाबाद भरिसां हथियार बंधन सामारो वासी अज़हर हुसैन खोसो खे गोलियुनि क़तल कयो। कुकड़ियुनि जे मुराद ख़ासि किली पुरोसरार नमूने फोत थियो। फोतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे। लवे जो मलकाणी शरीफ़ में जरक्स ऐं बंगार शाख जे पुछण में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि ॿिए ॾींहं बि मलकाणी शरीफ़ मेन बस स्टॉप ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि पारां शाखनि जे पुछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो, एहतजाजी जारी रखण जो चिता। सखर में JST पास मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण लाइ उमेदवारनि जो एहतजाज। टेस्ट में 50 खां 54 पारां एहतजाज कयो। उमेदवारनि चयो त टेस्ट में 5000 खां वधीक उमेदवार 50 खां 54 मार्कूं खयूं आहिनि, पासिंग मार्क्स 50 कयूं वञनि। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में 3 ॼणा

0: ਰਾਤੀ ਵਿਆਏ ਬੈਠਾ ਚੱਕ ਬਰਸਾਂ ਸਖਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਮੇ ਠੁਲ ਵਾਸੀ ਧਨਾਰ ਚੰਨਲ ਉਰਫ ਚੰਨੀ ਬੰਗਲਾਣੀ ਫੋਤ ਟਾਲਰ ਜੇ ਟੱਕਰ ਮੇ ਬ ਰਿਡੂ ਵੀ ਮਰੀ ਵਯੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਲਤੀਫਾਬਾਦ ਮੇ ਬਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇ ਟੱਕਰ ਮੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸਣ ਪੀਰਸਨ ਔਰਤ ਫੋਤ ਬਖਸ਼ਾਪੁਰ ਬਰਸਾ ਇੰਡਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੇਨ ਜੋ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਸਬਬ ਅਠਨ ਵਰਨ ਜੋ ਨਿਗਰ ਮੁਰਾਦ ਪੁੱਟ ਗਾਣੋ ਹਯਾਤੀ ਵਿਆਏ ਬੈਠੋ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप एलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन, एहतियात थी चुका आहिन।

0: और 7700।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का सीक्रेट।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: खित्ते की बनी है आवाज,
1: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: करे छो मुस्तफा कमाल असा इंतजामी यूनिट जा हामी आयो इंतजामी यूनिट के कयाम के लीड कंदड़ असो हीरो हों गार गंद कंदड़ बुधी गारिन सां काफिला न आहिनि रुकबा असां कंहिं बे क़ौम ख़िलाफ़ न आहे ॻाल्हाए रुगो पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कई आहे करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे कॾहिं बि पंहिंजी जान न आहे ॾींदो असां क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहियूं ईरान सां जंग जल्द ख़तम थी वेंदी जंग जे ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञी हा सदर मरण सयूं बि करे छॾियूं दुश्मन जे कंहिं बि ग़लतीअ जो ताक़त सां जवाब ॾियण लाइ 100% तयार आहियूं पासदार इनकलाब जे कर्मी चयो आहे त तहरान जारियत जवाब ॾियण जी भरपूर सलाहियत रखे थो मुल्क दुश्मन अंसरनि खे 3 लख खां वधीक जानसरनि खे सरगर्म करे छॾियो आहे सिक्योरिटी फोर्स आयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियन आगीअ में फोर्स जी कार्रवाई दौरान 6 ऐं 5 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो वज़ीर मोहसिन नकवी पारां फोर्स खे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश वॾे वज़ीर सयाद मुराद अली शाह सां पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटीअ जे वफ़द जी मुलाक़ात कराची हैदराबाद सखर एयरपोर्ट जे रिथाइन ऐं एविगेशन

0: विकड़नि ते ॿधल आहे। उन केस ते जेके असांजा अकेडमिक ब्लॉक्स आहिनि, जेको एडमिन ब्लॉक आहे, इंस्ट्रक्शन जेका असांजी आहे उहा जल्द खां जल्द शुरू थिए ऐं मुंहिंजे टेन्योर में असां हितां खां क्लास शिफ्ट करे उन नए कैंपस में पंहिंजो ॿारनि जी तालीम शुरू करायूं। जेकॾहिं असां में जेके
1: मटियारी की जी एस 1.6
2: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आई। सुबह जो मोकल रानी सब्जी मंडी पुल। मालूम
3: कदम एक नई दुनिया पर पोलियो थे तो इन्हीं करे पोलियो मुहिम छो त ये कतरा बार ताकत के वधायन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: एक्सेंट की आवाज
1: सोना
2: बीमारी वो आए कार्रवाई दौरान मजमू तौर से अठ दहशतगर्दन के मारे वो कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करा दई छो ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट क्वाड कई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके क्वाड में थियल दहशतगर्द हमले में अफगान सरजमीन ए शहर के मुलविस होजन जो इंकशाब क्वाड में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी के मुलविस होजन बाद अफगान तालिबान जो बिटो मयार बेनकाब क्वाड में मस्जिद से आपघाती हमलों कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउल्ला के नाले से सुणप थी वही बई बे बम्बार की सुणप जो अमल जारी अफगान आपघाती बम्बार की सुणप बाद साबित थी वो तो अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है। एम क्यूएम से वागियल वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल सूबे के क्याम बाबत कानून में तरमीम कर छो मुस्तफा कमाल असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लीड कंदड़ असो हीरो हों गार गंद कंदड़ बुधी छड़ गार काफिला ना रुकबा अस कें बे कौम खिलाफ ना गल रुगो पीपुल्स पार्टी की गाल कई है करप्शन कंदड़ बुजदिल हों कदें भी पांजी जान ना डी अस कुर्बानी दियण ला तैयार आयो ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तेहरान के एटमी हथियार का रोकने लाय फौजी कार्रवाई जरूरी हुई ईरान से बमबारी न कई आ तो एटमी हथियार ठाए वनिया सदर ट्रंप रूस ए ईरान से पाबंदी मरण वाले बिलंस से सयू भी कर दुश्मन के कें भी गलती जो ताकत से जवाब दियण लाए सौ सैकड़ो तैयार आयो पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तेहरान जारियत जवाब दियण की भरपूर सलाहियत रखे तो मुल्क दुश्मन अंसर के मोह दियण लाए टे लख का वधिक जानसर के सरगर्म कर सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में कार्रवाई यारह दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मूजिब चागी में फोर्सेज की कार्रवाई दौरान छह ए पंजगोर में पंज दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो किया वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी पारा फोर्सेज के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात कराची हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट के रिथायन एविग्रेशन यूनिवर्सिटी के क्याम जो जायजो वडे वजीर की

0: मटियारी की है FM 91.6।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे त उन बीमारी जो इलाज आबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी F.6
1: है कलंदर लाल शहबाज नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलिए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है आवाज,
2: उसी बनी है आवाज,
1: जीए FM
2: आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: एम के मसा वागियल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबन के क़याम बाबत कानून में तरमीम करण जो मुतालबो कर छो। मुस्तफ़ा कमाल असां इंतजामी यूनिट जा हामी आयो। इंतजामी यूनिट के क़याम के लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार गंद कंदड़ बुधी छॾिन गारिन सां काफ़िला न आहिनि रुकबा। असां कंहिं बे क़ौम ख़िलाफ़ न आहे ॻाल्हायो। रुगो पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कई आहे। करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे। कॾहिं बि पंहिंजी जान न आहे ॾींदो। असां क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहियूं। ईरान सां जंग जल्द ख़तम थी वेंदी। जंग जे ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञिया। सदर ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदियूं मारण वारे बिलंस ते सयूं बि करे छॾियूं। दुश्मन जे कंहिं बि ग़लतीअ जो ताक़त सां जवाब ॾियण लाइ 100% तयार आहियूं। पासदारनि इनकलाब जे कमांडर मोहम्मद करमीअ चयो आहे त तहरान जारियत जवाब ॾियण जी भरपूर सलाहियत रखे थो। मुल्क दुश्मन अंसरनि खे मोहन ॾियण लाइ 3 लख खां वधीक जानसरनि खे सरगर्म करे छॾियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब चागीअ में फोर्सेज जी कार्रवाई दौरान 6 ऐं पंजगोर में 5 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां फोर्सेज खे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। वॾे वज़ीर सयाद मुराद अली शाह सां पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथार्टीअ जे वफ़द जी मुलाक़ात। कराची हैदराबाद ऐं सखर एयरपोर्ट जे रिथाइन ऐं एविगेशन यूनिवर्सिटी जे क़याम जो जाइज़ो वरितो। वॾे वज़ीर पारां PAA जे ज़मीन जी फरहमी ऐं तरक़ियाती मामलनि जी सहूलियत ॾियण जी हिदायत। जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं। पेट्रोल तां लेवीअ जे ख़ात्मे ताईं लांग मार्च ख़त्म न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: ईरान सां जंग जल्द खत्म थी वेंदी, जंग जी खात्मे सां तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान के एटमी हथियारन का रोकण लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई, ईरान ठाहे वञे हा। सदर ट्रंप रूस ए ईरान ते पाबंदियों मरण। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची से फोन से राबतो। इसहाक डार ए अब्बास राखची खिते की सूरत हाल ए बेतरफन लागापन से गालू क्यों। परदेही खाते मूजिब बिन्ही अगवाणन खिते की तब्दील थन्दड़ सूरत हाल से भी ख्याल की देवठ कई। राबते दौरान तवानाई वारा रस्ता महफूज बनाने से भी गालू क्यों व्यू। गडियल कौमन के इजलास दौरान मुलाकात करते बेतफाक इसहाक डार तकरार जो गाल जरिए ही हल कढ़ी सकजे थो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात, मुख्तलिफ मामलन से गालू। अलामा नासिर अब्बास है तो मुलाकात में का भी गुझी एजेंडा न हुई। बानी के इलाज वारो मामलो है, एहतजाज जमहूरी आइनी हक है, रोकण वारो अमल मुनासिब न है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में कार्रवाई, 11 दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिये मूजिब चागी में फोर्सेज की कार्रवाई दौरान 6 पंजगोर में 5 दहशतगर्दन के मारे वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा फोर्सेज के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात। कराची, हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट की रिथान ए एविएशन यूनिवर्सिटी की क्याम जो जायजो वरतो वयो। वडे वजीर पारा पीए के जमीन की फरहमी ए तरक्याती मामलन की सहूलत देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत एक टोकन से 5 लीटर पेट्रोल वठण वारो शर्त खत्म कर छो। वफाकी वजीर शिजा फातिमा चया है तो वजीर आजम फ्यूल स्कीम सब्सिडी में 3 तब्दीलू क्यों हैं। एक टोकन से 5 लीटर वे हद के खत्म कर वो है। स्कीम तहत फी लीटर पेट्रोल 100 रुपया सस्तो फराम कर पे वे।

जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं। पेट्रोल तां लेवीअ जी ख़ात्मे ताईं लांग मार्च ख़तम न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त हुकुमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़तम करण लाइ तयारु न आहिनि। आईएमएफ रुगो बहानो आहे, हीअ अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि।

एम क्यू एम सां वाघियल वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जी क़याम बाबति कानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त असां इंतज़ामी यूनिट्स जा हामी आहियूं, इंतज़ामी यूनिट्स जी क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार गंद कंदड़ ॿुधी छॾनि, गारनि सां काफ़िला नाहिनि रुकबा। असां कंहिं बि क़ौम ख़िलाफ़ नाहे ॻाल्हायो, रुगो पीपुल्स पार्टीअ जी ॻाल्हि कई आहे। करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे, कॾहिं बि पंहिंजी

सिंध जे इम्कानी विरहांगे ख़िलाफ़ कराची जी सिटी कोर्ट में कराची बार जो ऑल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज वड़ाइच, अरशद शहर, हसीब जमाली समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िले बादशाह उहिदेदार शरीक। बदीन बार जे वकील अॻवान अमीर आज़ाद जो चवण हो त सिंध जे माण्हुनि लाइ ज़मीन जो टुकड़ो न पर संदन माउ आहे। सिंध जे माण्हुनि जी जज़्बनि ऐं अहसासनि सां न खेॾो। वकील फिदा हुसैन जामड़ो चयो त सिंध जो विरहांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। विरहांगे वारी साज़िश में मुलविस माण्हू गदार हूंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थे जी का भी जरूरत न आए। जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: उबावड़ो भरसा गोड लांगो में मुबैना अपघात कंदड़ नौजवान नारी समीना दोंदू के कत्ल करण जो इंकशाफ। नारी के कत्ल में संदस भाव असलम दोंदू मुलविस निकतो। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मूजिब जवाबदार पंजी भेण के कार इल्जाम हेठ कत्ल कयो आहे। नवाबशाह में टे महीना अग बी सेक्शन थाने की पुलिस हथा मुबैना मुकाबले में मारजी वेल नौजवान एजाज चांडियो की वारसन जो एहतजाज। वारसन मूजिब नौजवान एजाज चांडियो के कूड़े मुकाबले में बेगुनाह कत्ल कयो वियो आहे। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: अब टीवी के ॾिनल इंटरव्यू में पाक फौज जे तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो चवण हो त पाकिस्तान में थींदड़ आपघाती हमलन में 80% अफगान शहरी मुलविस आहिनि। अफगानिस्तान खां पाकिस्तान में दाख़िल थींदड़ दहशतगर्दनि में अफगानी बि शामिल हूंदा आहिनि। बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ खे बि अवामी हिमायत हासिल न आहे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द पंहिंजे नज़रिये खे बंदूक जे ज़ोर ते मढ़ण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान हरमैन शर्फेन ऐं सऊदी अरब जी हिफ़ाज़त लाइ कंहिं बि हद ते वञण लाइ तयारु आहे। सफ़ारती सतह ते बि सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान अमली तौर ते बि सऊदी अरब जी मदद लाइ मौजूदु आहे। सऊदी अरब जी सलामती लाइ असांजो अज़म ग़ैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदी अरब जो दिफ़ा करण लाइ तयारु आहियूं।

केपी जे शहर कुहाट में मस्जिद ऐसी आपघाती हमलों कदर दहशतगर्द अफगान शहरी निकतो बई आपघाती बम्बा की सुणप न थी। दहशतगर्द हमले सबब मुतासिर कुहाट वाले इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल इलाके के क्लियर किया गया।

0: यमन के ॾखिण इलाके में यमनी फौज जो हूसी बागन ते हमलो घट में घट 48 जणा मारजी विया केतिरा ई जख़्मी हुसैन पारां बि 31 यमनी फौजनि खे ॾेही ख़बरू इदारे मूजिब यमनी सरकारी फौज जे हमले में 48 खां वधीक हूसी मारजी विया आहिनि जॾहिं त हुसैन में 31 यमनी फौजनि खे बि मारण जी दावा कई आहे।
1: ईरान सां जंग जल्द ख़त्म थी वेंदी। जंग जे ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त तेहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञे हा। सदर ट्रम्प रूस ऐं ईरान ते पाबंदियूं मरण वारनि बिल्स ते सहियूं बि करे छॾियूं।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़ीअ सां फोन ते राब्तो। इसहाक़ डार ऐं अब्बास राख़ी ख़िते जी सूरतहाल ऐं बेतरफ़न लाॻापन ते ख़्यालनि जी डे॒वठु कई। परडे॒ही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि ख़िते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते बि ॻाल्हियूं कयूं। राब्ते दौरान तवानाई वारा रस्ता महफ़ूज़ बणाइण ते बि ॻाल्हि ॿोल। गडि॒यल क़ौमनि जे इजलास दौरान मुलाक़ात करण ते बि इतफ़ाक़। इसहाक़ डार जो चवण हो त तकरार जो ॻाल्हियुनि ज़रिए ई हल कढी सघिजे थो।
1: वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सेनेट में अपोज़िशन लीडर अलामा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात। मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। अलामा नासिर अब्बास चयो आहे त मुलाक़ात में का बि ॻुझी एजेंडा न हुई। बानी जे इलाज वारो मामिलो आहे। एहतजाज जमहूरी ऐं आइनी हक़ आहे। रोक अमल मुनासिब नाहे।

के मुस्तफा आगेल वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल सूबन की क्याम बाबत कानून में तरमीम कर जो मुतालबो कर छो। मुस्तफा कमाल जो चवण हो तो असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो, इंतजामी यूनिट्स की क्याम के लीड कदड़ असो हीरो हों। फारूक सतार जो चवण हो तो सिंध में छह इंतजामी यूनिट छा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी।

हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर फैमिली फिजिशियन सी नवाब शाह हॉल कॉलेज थी चुका आहे ने एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस देने के लिए है हर पांच वगे ताई एड्रेस स्टॉप रोड सापुल हैदराबाद 06222

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदार हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
4: In each and every Kashmir that we hunt down, there are the Afghans. When Pakistan has all the right of self-defense to any extent, to fix that problem. TDP is there, BMA is there, ETIM is there, ATIS is there, ISKP is there, IMU is there, and they are all making a terrorist party that is going on there. We don't talk with terrorists, we only kill terrorists.
5: अफ़गान सरज़मीन तां भारतीय सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दीअ खे रोकणु अफ़गान तालिबान जी ज़िमेवारी आहे। रियासती पॉलिसी बिल्कुलु वाज़ आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। अरब टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में पाक फ़ौज जे तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी चयो त पाकिस्तान में थींदड़ आपघाती हमलनि में 80% अफ़गान शहरी मुलविस आहिनि। अफ़गानिस्तान खां पाकिस्तान में दाख़िल थींदड़ दहशतगर्दनि में अफ़गानी शामिल हूंदा आहिनि। बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ खे अवामी हिमायत हासिल नाहे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द पंहिंजी नज़रिये खे बंदूक जे ज़ोर ते मढ़ण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान हरमेन शरफेन ऐं सऊदी अरब जी हिफ़ाज़त लाइ कंहिं बि हद ते वञण लाइ तयार आहे। सफ़ारती सतह ते बि सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान अमली तौर ते बि सऊदी अरब जी मदद लाइ हर वक़्त मौजूदु आहे। सऊदी अरब जी सलामतीअ लाइ असांजो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदी अरब जो दिफ़ा करण लाइ तयार आहियूं। केपी जे शहर कुहाट में मस्जिद ते आपघाती हमलो कंदड़ दहशतगर्द अफ़गान शहरी निकितो। बे आपघाती बमबार जी सुञाणप न थी। दहशतगर्द हमले सबब मुतासिर कुहाट वारे इलाइक़े में क्लीयरेंस ऑपरेशन बि मुकमल इलाइक़े खे क्लीयर कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूदु पुलिस लाइन में लिकियल ॿिन आपघाती बमबारनि खे बि मारियो वियो। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर ते 70 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। इलाइक़े खे मुकमल तौर ते क्लीयर कयो वियो।